हैप्पी बर्थडे साहब, छोटे वीरे सुखां वालों भी बहुत सारा प्यार, हमेशा हसदा ते हसाउंदा रहे पुत्र, रेडियो हांजी फैमिली वालों लख लख वधाइयां।

0: take it proud.
1: Homes अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सपनेयां दा एक मजबूत कर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नु 0433-280-252 ते
2: 04-04-2802-520-252
3: Immigration.
2: याद रखो 9077-9733

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस, शर्ता लागू।
1: रेडी सेट गो चेस्टन फोर्ड डेंडिनोंग रोड ते तुहानो उड़ीक रहा है। फोर्ड रेंजर, रेंजर सुपर ड्यूटी, एवरेस्ट ते सदाबहार मस्टैंग, ब्रांड न्यू डेमो ते क्वालिटी प्री ओन्ड व्हीकल्स, ट्रेड इन अते फाइनेंस ऑप्शंस वी अवेलेबल। आओ ते अपनी नवी फोर्ड दा टेस्ट ड्राइव करो, बिजनेस फ्लीट लाई गल करो, व्हीकल एक्सपर्ट्स टिम फोर्ब्स या कोरी नाल, रेडियो हांजी दे हवाले नाल पाओ 3 साल दी फ्री सर्विस। चेस्टन फोर्ड, रेडी सेट फोर्ड।
0: किचन का स्टाइल डल लगता, बाथरूम वैनिटी सिंपल जया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, फाड़े घर नु बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाड़ी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
2: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
3: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
2: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
0: ओपिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सपनेयां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओपिट होम्स अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओपिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नो 0433-280-252 ते 0433-280-252।
4: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ।

ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।

0: इश्क कदे धर्म जात जां सरहदां वेख के नहीं हुंदा।
1: चढ़दे पंजाब बार्डर कबूतर नहीं टप सकदा, ते तू किस तरह टप आ।
0: अते एक वार इश्क हो जावे तां आशिक माशूक लई हर हद टप सकदे ने।
2: बागी ते आशिक हदां सरहदां टप ही आउंदे ने।
0: इसे तरह दे जुनून भरे इश्क दी कहानी है इश्कनामा।
3: रांझे दिते 12 साल ते मैं दिती आ जिंदगी।
0: अरविंदर सिंह खैरा दी डायरेक्शन अते जय रंधावा अते शहनाज गिल दी जोड़ी दी कमाल दी केमिस्ट्री वेखो सिनेमा दे वड्डे पर्दे ते 24 जुलाई नू। फिल्म इश्कनामा।
4: चलाना आसान नहीं पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
5: सोना चाहिदा,
6: भरोसा चाहिदा,
5: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।
7: It's just another sad love song, Beiji, Beiji, Beiji.

0: You don't know what you got till it's gone, gone, gone, gone.
1: Hanji, Hanji, oye, Hanji, Hanji,
2: Hanji Radio.
3: Wow, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
4: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
3: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
5: जी तुसी बीमार हो ता एआई कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
6: किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, तुहाडे घर नूं बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओह वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन।
7: Attention travelers, the upgraded Air India experience is now boarding with warm Indian hospitality, gourmet meals and over 3000 hours of in-flight entertainment. Better non-stop with Air India.
8: Mere naal ta koi khelda hi nahi, sab khol di lunch dinde ne.
9: वादवा प्रोडक्शंस अते पेनोरमा स्टूडियोज पेश करते हैं नवी पंजाबी फिल्म बंद अखां नाल किसे अपने नू वेखण दी कहानी कणकां दे ओले।
10: साडा रब वसदा ए कणकां दे ओले दी।
9: स्टारिंग गुरप्रीत घुग्गी, तानिया, किश्तू के अते होर कई साथी कलाकार।
11: हुण दस्सो मैनू कणकां दे ओले कौन।
9: रिलीजिंग ऑन 31 जुलाई।

कि धरना सफल हो गया, आई डोंट थिंक सो ये सफल हुए, सफल नहीं हुआ, दूर दूर तक सफल नहीं हुआ। धर्मेंद्र प्रधान नूं हटा के अकाउंटेबिलिटी सरकार दी तय नहीं हुई। हाले भी सरकार दे कोल जिहड़ी प्लानिंग हैगी, एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाती है, सीबीटी च लै जांगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग सिस्टम होएगा, इहदे च अलग अलग बंदे ऑब्जर्व करनगे, सुपरविजन करनगे, बला बला बला बला बला नथिंग। 2023 तो सबक लिया नहीं, 24 तो लिया नहीं, 26 तो लिया नहीं, अगे लै लोंगे सबक, आई डोंट थिंक सो, मैं तो नहीं गरंटी चकदा। खैर अज दे इनसाइट रिपोर्ट दे विच अज दे दिन नहीं दिओ इजाजत, धन्यवाद।

0: मेरा इस्लाम ने ये कहना है कि नो कमेंट।
1: सर आप प्रेस को बुलाकर कहते हैं नो कमेंट।
2: मगर सर क्या ये सच नहीं है कि आप ही जॉर्डन की अगली एल्बम रिलीज कर रहे हैं, जो गाने उसने आपके लिए यूरोप में रिकॉर्ड करे थे?
1: नो कमेंट।
3: मार्केट में एल्बम खुलता है और आर्टिस्ट जेल के अंदर। दिस इज माय विजन।
2: इस आंगन में खेलने वाला लड़का आज

0: प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस को दो मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स, वाइज टेक्स एडवाइजर्स, तुम्हारे बिजनेस के भरोसेमंद टेक्स एडवाइजर्स।
1: इश्क कदे धर्म जात जां सरहदां वेख के नहीं हुंदा।
2: चढ़दे पंजाब बॉर्डर कबूतर नहीं टप सकदा। तू किस तरह टापा है?
1: अते एक बार इश्क हो जावे ता आशिक माशूक लई हर हद टप सकदे ने।
3: बागी ते आशिक हदां सरहदां टापी आउंदे ने।
1: इसे तरह दे जुनून भरे इश्क दी कहानी है इश्कनामा।
4: रांझे दित्ते 12 साल ते मैं दित्ती आ जिंदगी।
1: अरविंदर सिंह खैरा दी डायरेक्शन अते जय रंधावा अते शहनाज गिल दी जोड़ी दी कमाल दी केमिस्ट्री वेखो सिनेमा दे वड्डे पर्दे ते 24 जुलाई नू। फिल्म इश्कनामा।
0: की चाहिदा? ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लाउणा जां वीजे लई मशवरा चाहिदा? मिल जुगा। सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा लई एक भरोसे योग ना। जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील करदे ने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
5: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दाला, ग्रोसरी दा हर सामान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। आओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम वी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
0: रेडी सेट गो चेस्टन फोर्ड डेंडिनोंग रोड ते तुहानू उड़ीक रहा है। फोर्ड रेंजर, रेंजर सुपर ड्यूटी, एवरेस्ट ते सदाबहार मस्टैंग, ब्रांड न्यू डेमो ते क्वालिटी प्री ओन्ड व्हीकल्स, ट्रेड इन अते फाइनेंस ऑप्शंस वी अवेलेबल। आओ ते अपनी नवी फोर्ड दा टेस्ट ड्राइव करो। बिजनेस फ्लीट लाई गल करो व्हीकल एक्सपर्ट्स टिम फोर्ब्स या कोरी नाल। रेडियो हांजी दे हवाले नाल पाओ 3 साल दी फ्री सर्विस। चेस्टन फोर्ड, रेडी सेट फोर्ड।
6: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
7: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालिया नू, लीगल वालिया नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें?
6: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंह स्मैश रिपेयर वालिया ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383-85-77-48 ते। सिंह स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
0: सोना चाहिदा?
8: भरोसा चाहिदा है?
0: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा? चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा? गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042।

0: Just Records.
1: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
2: की हुआ
1: अथे इमिग्रेशन दे एने पंगे ने यार मुकदे नहीं
2: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा एम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
1: या 90-77-93
2: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
1: याद रखो 9077-9733
2: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
1: हर कदम तुहाडे नाल
3: ओबिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सुपनेयां दा एक मजबूत कर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओबिट होम्स अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक अज ही पहुंचो ओबिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान 0433-240-250 ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਲਵੇਸ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ ਟਾਇਰ ਫੋਰਸ ਯੂਨਿਟ 1 19-25 ਸੁਮਾਟਨ ਰੋਡ ਕੈਂਪਲਫੀਲਡ ਕਾਲ 0390-86655 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ tireforce.com.au
4: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
5: ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ

0: इश्क कदे धर्म जात जां सरहदां वेख के नहीं हुंदा।
1: चढ़दे पंजाब बार्डर कबूतर नहीं टप सकदा, ते तू किस तरह टपा है।
0: अते एक वार इश्क हो जावे ता आशिक माशूक लई हर हद टप सकदे ने।
2: बागी ते आशिक हदां सरहदां टप ही आउंदे ने।
0: इसे तरह दे जुनून भरे इश्क दी कहानी है इश्कनामा।
3: रांझे दिते 12 साल ते मैं दिती आ जिंदगी।
0: अरविंदर सिंह खैरा दी डायरेक्शन अते जय रंधावा अते शहनाज गिल दी जोड़ी दी कमाल दी केमिस्ट्री वेखो सिनेमा दे वड्डे पर्दे ते 24 जुलाई नूं। फिल्म इश्कनामा।
4: चलाना आसान नहीं पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
5: ਕਿੱਥੇ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ?
6: ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਜੂ ਪਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੀਗਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਕਿਵੇਂ?
5: ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਮੈਸ਼ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਇਰਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਟੀਮ, ਆਲ ਮੇਜਰ ਐਂਡ ਮਾਈਨਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਵਰਕ ਐਂਡ ਪੇਂਟ, ਫ੍ਰੀ ਲੋਨ ਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੰਮ ਤੇ। ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 0383857748 ਤੇ। ਸਿੰਘ ਸਮੈਸ਼ ਰਿਪੇਅਰ, 8 ਗ੍ਰੇਸ ਵੇ, ਰੇਵਨ ਹਾਲ।

0: मारी उन्होंने, पूतना मारी उन्होंने, आनंद दिया पूरी दुनिया को उन्होंने आनंद दिया। फर्क ये रहा, लोग कहते हैं जो श्री कृष्ण ने कहा वो करो, जो राम जी ने किया वो करो। तो मैं कहता हूं भाई श्री कृष्ण ने ऐसा कुछ नहीं किया जो आप करो। श्री कृष्ण ने क्या किया ये तो आपने पढ़ा ही नहीं। तो राम और ये भगवान 24 अवतार हुए परमात्मा के, 24वां होना है। भगवान नारायण के अलग अलग स्वरूपों में परमात्मा आता है और दुनिया को दिखाता है। जैसे मुझे यहां से इंडिया जाना है तो फ्लाइट्स कई कंपनीज की चलती है, बट इंटरनली तो वो जहाज ही है, काम तो उसका उड़ाकर पहुंचाना ही है। ऐसे ही आज दुनिया में इतनी बड़ी दुनिया है लेकिन एक भी आदमी की शक्ल एक से पूरी मैच नहीं हो सकती, थंबनेल मैच नहीं हो सकता,
1: फिंगरप्रिंट नहीं होता है मैच,
0: रेटिना नहीं हो सकता मैच। वारे ब्रह्मा जी कितने मॉडल हैं आपके पास, गाड़ी बनाती है ये टोयोटा का ये मॉडल, ये किया कैरेंस का मॉडल, ये मर्सिडीज का, ये बीएमडब्ल्यू का, सब एक सा होता है सारी गाड़ियों का। ये कैरेंस है, ये दूसरी है, ये सेल्टॉस है, जो भी होती है। लेकिन वारे ब्रह्मा जी एक भी मॉडल मैच नहीं करता, एक भी मॉडल, कहीं ना कहीं तो डिफरेंस है, कितना जुड़वा हो। और इंटरनली तो सब एक जैसे ही, वही नाक, वही आंख, वही कान, वही सब, वही दिल, वही दिमाग।
1: सही बात,
0: ये क्या है उसकी माया। धरती पे आकाश खड़ा है बिना एक भी खंबा, प्रभु का देखा एक अचंबा। हम हैरान हो जाते यार यहाँ पे बिना दीवारों के कैसे मकान खड़े हैं भाई, पिलर्स पे खड़े हो जाते हैं, लकड़ी पे है
1: ये तो। अब पोर्टेबल भी लेकर जाते हैं, आज से दो हफ्ते पहले मैंने पोर्टेबल मकान जाते हुए देखे ट्रक पे।
0: इंडिया में भी हो रहा है,
1: ये भी चल रहा है,
0: इंडिया में कॉन्क्रीट का मकान ले जाएंगे।
1: आपने गाड़ियों की बात की, शौक है गाड़ियों वाड़ियों का?
0: नहीं
1: खास नहीं। कौन सी चलाते हो, चलाते हो वैसे खुद गाड़ी वगैरह?
0: बहुत ड्राइव किया मैंने अपनी
1: अच्छा
0: जिंदगी में, कहाँ ड्राइवर रखने की औकात थी हमारी।
1: सबसे पहली गाड़ी कौन सी थी, है ध्यान में?
0: सबसे पहली गाड़ी थी, एक ढोल बजाता था लड़का मेरे साथ, उससे खरीद ली थी मैंने जैन गाड़ी।
1: ओके क्या बात, किस रंग की थी?
0: सफेद रंग की।
1: ठीक ठीक। और अब क्या चलाते हैं महाराज जी?
0: अरे मत पूछो।
1: समझ गए भाई, समझ गए, अच्छा ही चलाते हैं। पर चलो आप अपने कितने का अगर कमाते हैं, अच्छा कमाते हैं तो अच्छी बात है, अच्छा जीना चाहिए। अच्छा एक बात है महाराज जी, आपकी वेशभूषा हमेशा सेम रहती है, इधर क्यों ये हमेशा सिमिलर टाइप ऑफ ही कपड़े क्यों, हमेशा ही काली शॉल, हमेशा ही चिट्टा?
0: कल कीड़ा रंग पाइए।
1: अच्छा अच्छा, जनरली यही सोच है,
0: पता है कि इन्होंने इस तरह ही आना है।
1: नहीं मैं सोच रहा कोई इधर टीम वगैरह भी होंगी अपनी, क्यों कहते कि नहीं महाराज जी कपड़े तो यही वाले ही पाने हैं, इस तरह कोई टीम वगैरह रखी हुई? बहुत ही लोगों को होंगी ना,
0: बंदे दी सोच है ना। मैं पहले बड़े रंग पांदा सी का।
1: ओके
0: ओल मारे भरे पए है, फिर भी दिमाग खराब किया, आज काला पाइए गया, पीला पाइए गया, आज रेड पाइए गए, फिर सोचा यार सूरदास काली कावर पे चढ़े ना दूजो रंग।
1: क्योंकि साडे धर्म च काफी बड़ी गलबात हुंदी है ना कि काला रंग,
0: काला रंग साडा है ना, अही जोड़ दे दूजिया नाल,
1: काले रंग नू कहंदे ना शगुन नहीं हुंदा चंगा,
0: दाढ़ी काली हटाओ, काल वाले बाल काले,
1: पुट्ठा जो चिट्टे हुंदे लोकी खर्चा करदे
0: आ काले करदे,
1: ठीक है
0: पूजा च काले बाल लेके पहने।
1: ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿੱਥ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿਊਵਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ
0: ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ

ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।

मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नूं उनां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।

नवे नवे आए ते वेखियां ए नारा ए कोठियां कारा ए सेक्टर 17 जिन्हां ने सानू मोलिया साडी सादगी नू साथो खोलिया उत्तों तू मिल गई पहला ता लग गया के किस्मत खुल गई तेनू तैयार

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
3: हुन टेंशन छड़ो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
4: फिर लवाइए किथों?
3: सन करंट वालिया कोलों। 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
5: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते।
6: हां जी रेडियो।
7: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
8: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
7: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
8: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नूं उनां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।

0: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
1: की होया
0: थे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
1: काका जी टेंशन छोड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
0: याद रखो 9077-9733।
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
0: हर कदम तुहाडे नाल।

प्रवाहो साचा साहिब साच नाए पाख्या पौ अपार आखें मंगें दे दे दात करे दातार फेर के अग्गै रखिए।

एक बार जो तुझ पावे साई पली का, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पाकसार, असंख मोहन लिव लाए तार, कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुझ पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवट हत्या कुमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कुड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेच मल पाख खाए, असंख निंदक सिर करे पार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुझ पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कै सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सालाह।

जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, परिये हाथ पैर तांदे पानी तोता पुत्र सखे, मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लिये ओ तोए, परिये मत पापा कै संग ओ तोपे नावे के रंग, पुन्नी पापी आखन नाए कर कर करना लिख ले जाओ, आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ। तीर्थ तप दया दत दान, जे को पावे तिलका मान, सुनिया मनिया मन कीता पाओ, अंतर गत तीर्थ मल नाओ, सब गुण तेरा मैं ना ही कोय, विन गुण कीते भगत ना होए, स्वस्थ आत बाणी परमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ, कवन सुवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार, कवन सिर उत्ती मां कवन, जित हुआ आकार, वेल न पाया पंडती जे होवे लेख पुराण, वक्त न पाया का दिया जे लिखन ले कुरान, हितवार ना जोगी जाने, रुत महा ना कोई, जां करता सिर ठीको साजे, आपे जाने सोई, केव कर आखा केव सलाही, क्यों वरनी केव जाना, नानक आखन सब को आख है, एक दू एक सियाणा, वड्डा साहेब।

पाए जाए। ए अंत न जाने कोए, बहुता कहिए बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। एवड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप आप। नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुमाए, केते

दुख भूख सदमार ए बेदात तेरी दातार बंद खलासी पाने होए और आख न सके कोए जे को खाएक आखन पाए ओ जाने।

आसन लोए लोए पंडार, जो कुछ पाया सो एक कावार, कर कर वेखै सिरजनहार, नानक सत्य की साची कार, आदेश तसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, एक दूजी पौ लख होए, लख होए लख वीस, लख लख गेड़ा आखिया, एक नाम जगदीश, ए तरह पत पवड़िया, चढ़िया होए अकीस, सुन गल्ला आकाश की, कीता आई रीस, नानक नदरी पाई है, कूड़ी कूड़ै फीस, आखन जोर चुपै नहीं जोर, जोर न मंगन दे न जोर, जोर न जीवन मर न जोर, जोर न राज माल मनसोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए, राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सचाप सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथै पाए, नानक गया जापे जाए, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का खो करम, केते पवन पानी बैसंतर, केते कान महेश, केते ब्रह्मे कार्त कड़िया, रूप रंग के वेश, केतिया करम भूमि मेर, केते केते तूप देश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवेश, केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद, केतिया खानी, केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेव केते, नानक अंतनांत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद बनोद कोट आनंद, शर्मखंड की बाणी रूप, तिथै कार्त कड़ी है बहुत अनूप, कां किया गल्ला कथिया ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए, तिथै कड़ी है सुरत मत मन बुद्ध, तिथै कड़ी है सुरां सिदां की सुध, कर्मखंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर, तिथै जोध महामलसूर, तिन मैं राम रिया भरपूर, तिथै सीतो सीता मैं मामा, तां के रूप न कथने जाए, ना ओ मरे ना ठागे जाए, जिन कै राम वसै मन माहे, तिथै भगत वसे के लोए, करे आनंद सच्चा मन सोए, सच खंड वसे नंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै

आप श्रीमुख वाग्पाद सहित छपे छो प्रसाद चक्र चेने हर वर्ण जात हर पात नय रूप रंग हर रेख पे को कह सकत कह अचल मूर्त अनुभव प्रकाशम तो कह जाय कोट इंद्र इंद्रान सा सहान गणित जाय तिर भवन में सुर नार्य सुर नेत नेत बंतरन कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण सुमत जाम क्रिया छंद नमस्तंग अकाले नमस्तंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अभेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अभंजे नमस्तंग अडामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अभीते नमस्तंग अभाये नमस्तंग अडाये नमस्तंग अनिले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अछेदे नमस्तंग अगाजे नमस्तंग गंजे नमस्तंग भंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अबारे नमस्तंग सुएक नमस्तंग अनेक नमस्तंग अभूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्भर्मे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्भेषे नमस्तंग निर्नामे नमस्तंग निर्कामे नमस्तंग निर्धाते नमस्तंग निर्घाते नमस्तंग निर्दूते नमस्तंग अभूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निर्तापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग अगाये नमस्तंग अबाये नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग संयोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अभंगे नमस्तंग अगमे नमस्तरमे नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजवे नमस्तस्ते अजवे अदेशंग अदेशे नमस्तंग अवेशे नमस्तंग निर्तामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वद्याले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्तु देवे नमस्तंग अवेवे नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सुबन्वे नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो कालकाले नमस्तस्तु द्याले नमस्तंग अवर्णे नमस्तंग अमरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्वदंदे नमो सतबंदे नमस्तंग निर्साके नमस्तंग निर्भाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तत रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वद्याले नमो सर्वपाले चात्री छंतो प्रसाद अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अभू हैं अलेख हैं अभेक हैं अनाम हैं अकाम हैं अदय हैं अभय हैं अजीत हैं अभीत हैं त्रिमान हैं निदान हैं त्रिवर्ग हैं असर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजय हैं अजाद हैं अजन्म हैं अवर्ण हैं अभूत हैं अभर्ण हैं अगंज हैं अभंज हैं अजूज हैं अजंज हैं अमीक है रफीक है अदंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरश्रीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अभूत है अजूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अभ्रम है अजीत है अभीत है अबा है अगा है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है प्रियांक प्रिया छंद।

अनंगिया नामे समस्ति स्वरूपे प्रभंगी परमाते समस्ति प्रभूते कलंक विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे सवरंग परम रूपे नमो जोग जोगे सवरंग परम सिद्धे नमो राज राजे सवरंग परम बिरदे नमो शस्त्रपाने नमो।

अप्रेत देवे सुतर में नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहंग नमो पूपे नमो दान दाने नमो मान मानंग नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्व प्रणाशी अनूपे अरूपे सुमस्तल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बिर्ध करदा अधो उर्ध अर्धंग अगोग हरता परं परं परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सत दाता दयारं अछेती अपेदी अनाम अकामं समस्तो पराजी समस्तस्ततामं तेरा जोर चातुरी छंद जलय है थलय है अभीत है अभय है प्रभु है अजू है अदेश है अवेश है प्रियं पुरा छंद गादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सब माने समस्ति निदाने नमस्त्वंग निनाथे नमस्त्वंग परमाते नमस्त्वंग अगंजे नमस्त्वंग अभंजे नमस्त्वंग अकाले नमस्त्वंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो सा साये नमो माय माय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो सर्व तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व दिसंग नमो सर्व कृत्संग नमो सर्व रंगे त्रभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखजे अभजे समस्तंग प्रसजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सदा सर्वदारिद सिद्धंग निवासी चार परिचान तो प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अलख जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुहाल छंद तो प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मंत्र मान देव अभेद आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुनकार जत तत्र विराज ही अब दूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग ना रेख आद पर उदार मूर्त अजोन आदर से देश अरना पेश जाकर रूप रेख न राग जात्र तात्र दिशा विशा हुए फैलो न राग नाम काम बहिन पेख ताम हो न जाए सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मान ताए एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानी जय बेधरक तेव रूप रंग न जात पासो जानी कह देव तात मात न जात जाकर जन्म मर्म ही चक्र बकर फिरे चतर चक मान ही पुरती लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आद देव अनाद मूर्त थाप सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रस्त्यो सुजंबव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म ताम सो परम रहत अभूत अलख अपेख अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्व गंजन दुष्ट पंजन मुकदाय काम आव रूप अमीक अनुस्तुत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अभांग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपाल सर्वगंता सर्वहंता सर्व तेयन पे सर्व शास्त्र न जानी जय रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नेत पाकत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवे वो चित मदभार छंद तो प्रसाद गुण गानुदार मैं माया पार आसान अभंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अनाथ।

कालानकान अनुभूत अंग अभावंगत मित पार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलछे कंस आदिष्टे धर्म सर्वां बरनांडिये अंडंड बांडिये चाचरे चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निरनामे अकामे व्यंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चाचरी छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृश्य अकृषय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश के आभे जमेश के आगा जिकर्म के आ

कि जगतं कृति हैं, कि छत्रं छत्री हैं, कि ब्रह्मं स्वरूपे, के अनुपव अनुपे, के आद अदेव हैं, कि आप अभेव हैं, कि चक्रं बहीन है, कि एक अधीन है, कि रोजी रजा कह रही में रहा कह, के पाक बेअब है, के गैबिल गैब है, के अफल गुना है, के साहल सुना है, के कारण कुनंद है, के रोजी दहंद है, के राजग रहीम है, के कर्मं करीम है, के सर्वं कली है, के सर्वं दली है, के सर्वत्र मानिय, के सर्वत्र दानिय, के सर्वत्र गौणे, के सर्वत्र पौणे, के सर्वत्र देशे, के सर्वत्र पेशे, के सर्वत्र राजे, के सर्वत्र साजे, के सर्वत्र दीने, के सर्वत्र लीने, के सर्वत्र जाओ, के सर्वत्र भाओ, के सर्वत्र देशे, के सर्वत्र पेशे, के सर्वत्र काले, के सर्वत्र पाले, के सर्वत्र हंता, के सर्वत्र गंता, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र काज है, के सर्वत्र राज है, के सर्वत्र सुख है, के सर्वत्र भोग है, के सर्वत्र त्राण है, के सर्वत्र प्राण है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र मानी है, सदैव प्रदानी है, के सर्वत्र जापी है, के सर्वत्र थापी है, के सर्वत्र पान है, के सर्वत्र मान है, के सर्वत्र इंद्र है, के सर्वत्र चंद्र है, के सर्वं कलीम है, के परमंग फहीम है, के अकाल अलाम है, के साहिब कलाम है, के हुसन वजू है, तमामल रजू है, हमेशा सलाम है, सलीख दुमदाम है, गनीम उल शिकस्ते, गरीब उल परस्ते, मुलंदर मुकाने, जमीन उल जुमाने, तमीज उल तमामे, रजू अल निदाने, हरीफ उल अजीमे, रजाय यकीने, अनेकल तरंग है, अभेद है, अभंग है, अजीज उल निवाज है, गनीम उल खिराज है, निरका स्वरूप है, त्रिमुक्त भूत है, प्रभगत प्रभा है, सो जुग सुदा है, सदैव स्वरूप है, अभेदी अनूप है, समस्तो पराज है, सदा सर्वसाज है, समस्तल सलाम है, सदैव कलाम है, निर्बाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, ओम आद रूप है, अनाद स्वरूप है, अनंगी अनामे, त्रिभंगी त्रिकामे, त्रिभर्गन त्रिवादे, अगजे अगाधे, सुभंग स्वरूपागे, सुसर्वान रागे, त्रिपुगत स्वरूप है, अछज है, छूत है, कि नरकम परनाश है, पृथ्वी परवास है, निरकत परवाह है, सदैव सदा है, बेपुगत स्वरूप है, पर जुगत अनूप है, निरकत सदा है, बेपुगत परवाह है, अनुगत स्वरूप है, पर जुगत अनूप है, चाचरी छंद अभंग है, अनंग है, अभेक है, अलेख है, अभर्म है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अभय है, अभूत है, अधूत है, अनास है, उदास है, अधंध है, अभंध है, अभक्त है, विरक्त है, अनास है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनित है, अलिख है, अधिक है, अलेख है, अभेक है, अडा है, अगा है, असंभ है, अभंग है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजात है, चारपड़ चंतो प्रसाद, सर्वंग हंता, सर्वंग गंता, सर्वंग ख्याता, सर्वंग ज्ञाता, सर्वं हर्ता, सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं त्राणं, सर्वं कर्मं, सर्वं धर्मं, सर्वं युक्ता, सर्वं मुक्ता, रुआल चंद तो प्रसाद, नमो नर गनासे, सदैव प्रगासे, अनंग स्वरूपे, अभंग भूते, परमात्म परमाते, सदा सर्वसाते, अगाध स्वरूपे, निर्बाध भूते, अनंगी अनामे, त्रिभंगी त्रिकामे, निर्भंगी स्वरूपे, सर्वंगी अनूपे, न पोत्रे, न पुत्रे, न सत्रे, न मित्रे, न ताते, न माते, न जाते, न पाते, निर्साक शरीक है, अमित ओमिक है, सदैव परवाह है, अजय है, अजा है, भागवती छंद तो प्रसाद, के जाहिर जहूर है, हाजर हजूर है, मेशल सलाम है, समस्तल कलाम है, के साहिब दिमाग है, के उसन चराग है, के कामल करीम है, के राज करीम है, के रोजी दहंद है, के राज करहंद है, करीमुल कुमाल है, के हुसन जमाल है, गनीमुल खराज है, गरीबुल निवाज है, हरीफुल शकन है, हिरासल फकन है, कलंकम प्रनास है, सुमस्तल निवास है, अगंजल गनीम है, रजायक रहीम है, सुमस्तल जुबा है, के साहिब के राह है, के नरकम प्रनास है, बिस्तल निवास है, के सर्वर गवन है, के हमेशा रवन है, तमाम तमीज है, समस्त अदीश है, परंग परंग ईस है, समस्त अदीश है, अदेसल अलेख है, अभेसल अभेक है, जमीन जुमा है, अमी कुमा है, करीमल कुमाल है, के जुर जुमाल है, के अचलंग प्रकाश है, कृमित्व सुभाष है, के अजब स्वरूप है।

गण मुदाम अर बार गंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मन मन सुनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनास मन मन प्रगास गुण गण प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिसविस अभंड जल थल महंत दिसविस बेअंत अनपौ अनास त्रित तर तुरास आजान वा एक सदा ओंकार आद कथनी अनाद खल।

अंठन अबार आडीठ धर्म अत ठीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मना संतो प्रसाद करना ले है अर काले है कल खंडल है मैं मंडल है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है त्रित के तरण है जग के करण है मनमानी है जग जानी है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करुणाकर है विश्वम्भर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कल खंडस है परते पर है करुणाकर है अजपाजप है अतपातप है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करुणाकृत है अकृताकृत है तरणीकृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजभाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कल गायक है विश्वम्भर है करुणालय है निर्म नायक है सर्वपायक है पाव पंजन है अर्गंजन है रवतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरताहर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है प्रियांग प्रिया छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संक्षात रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्र अनादंगूते कलंकार रूपे अकलंकार लंके नमो आसे आसे नमो भांग भंके अभंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक श्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज भंज अलख पख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे प्रियांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तर प्रनासे अगंजन अनामे सुमस्तल निवासे निर्कामंग बभूते सुमस्तंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रनासी सोतर्मंग प्रभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रनासी करीमल कुरंदा सुमस्तल निवासी अजायब बभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयंबं सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते। तो प्रसाद सोइए सराव सद समूह सिदान के देख फिरो कर जोग जति के सूर सुरार दन सुध सुधायक सन समूह अवनिगति के सारी देश को देख रहे हो मत को न देखत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोर तुरंग कुरंग से कुद पौन के गौन कुजात निवारे पारी पजान कपूर बलि बन्याव सीत न जात बिचारे इते पै तो कांपे पुप अंतकुणा के पाए बिदारे जीत बिरे सब दे दिशान को बार जित टोल मृदंग निगारे गुजत गुण गजान के सुंदर हंसत है हजराज हजारे ओत पवेख पवान के पुप कौन कने नी जात बिचारे श्री पत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नाम दया दम दान सुसंजम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन समान समान को पिख है पौन हार जति जत हर सब विचार हजार को देख श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लिख सुध सुबा दुरंत दुबा सुसाज सनह दुर्जान।

बड़े बड़ियार अवचार इसार की धार बछैया तोर देश बुलंद बवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोरन हर सुबातन ही चकचार लवैया साहेब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव फिनन निशाचर पूत पवेख पवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रताप अनबार जय तुन पापन के बहु पुंज कपेंगे सात समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सवै अब लोग जपेंगे मानव इंद्र गजिंद निरातम जोन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजात गदान अनेक स्वंबर साज भरेंगे ब्रह्म हेश्वर विष्णु सचिपत अंत

0: नहात फिरयो लिए सात समुंदरन लोग गयो पर लोग गो आयो बास कियो बखियान सु बैठ कै ऐसे ऐसे बैस बतायो साच कहो सुन लियो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो कहूं ले पायन पुत्रयो सिर कहूं ले लिंग ले ढलकायो कहूं लिखियो हर अवाची दिशा में कहूं पुछा को शीस नवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावो आप हाथ दै मोहि बचावो सुखी वसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर इच्छा नन कर दै करिया सब बैरन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ जो बर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारिया चुन चुन सत्र हमारे मारिया आप हाथ दे मुझे उबरिया मरण काल का त्रास नवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा सिरिया तुझो करियो रच्छा राख लो।

महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चिंत नहीं पेव। आप अपनी बुद्ध है देती, वर्णत पिन पिन तो तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कहब सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई पूपा, अंडज जे राज से तजकिनी, उत्पुज खान बहु रजदीनी। कहो फूर राजा हर बैठा, कहो सिमट पयो शंकर कैठा, सगरी सृष्ट दिखाए चंभव, आज जुगा स्वरूप सुजंभव। आव रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रनकाता। जे आज तो तब सरनी परे, तिन के दुष्ट दुख है मरे, पुरख जवन पग परे त्योहारे, तिन के तुम संकट सब तारे। जो कल को एक बार त्योहार है, ताके काल निकट नहीं आए है, रक्षा होए ता सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे न।

0: सन्मुख सिख कोई जीव रहे गुरु नाले, गुर के चरण हृदय ते आए अंतर आत्मे समाले, आप छड सदा रहे परने गुर बिन अवर न जाने कोए। कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए,
1: जे को गुर तेरे मुख होवे बिन सतगुरु मुक्त ना।

तही गुणी संसार परम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनु अंत दिन हर

परम सन्मान योग शतर चवर तखत दे मालक समुची मानवता दे सांझे रहबर खलकत नू हक सच दा रब्बी पैगाम बख्शिश करन वाले संसार दे सर्ब सांझे पैगंबर दीन अते दुनिया दे मालक हलत पलत दे रखवाले सर्ब घटा प्रतपालक ऐसे दीन दयाल सच्चे पातशाह गुरगद्दी पुर सुभायमान जुगो जुग अटल धन गुरुदेव श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हां दी पावन पवित्र हाजूरी दा आनंद माणदिआं आप सरबत माई भाई गुरु खालसा जी अमृत वेले तों सचखंड श्री दरबार साहिब श्री हरिमंदर साहिब विखे सतगुरु सच्चे पातशाह जी वल्लों बख्शिश कीते हुए पावन मुखवाक सरवण कीते अमृत वेले तो हाजरियां भरदिआं सेवा ते सिमरन दे नाल जुड़दिआं गुरद्वारा मंजी साहिब दीवान स्थान विखे सवेर वेले दे सजे हुए दीवाना दीआं हाजरियां भर रहे हो आप वड्डे भागां वाले हो अते देशां विदेशां दे विच बैठी सिख संगत जो लाइव टैलीकास्ट दे राहीं गुरु की बाणी दे नाल गुरदर्शन नाल जुड़ी हुई है ये वड्डे भागां दा सदका सतसंगी जणों सतगुरु जी दी पावन बाणी दा फरमान है सब दू वड्डे भाग गुरसिखा के जो गुरचरणी सिख पड़तिआ सब तो वड्डे भाग उन्हां गुरसिखां दे हन जो गुरु के चरणां दे विच अपना आपा भाव त्याग के समर्पित होके गुरु के चरणां दी हाजरी भरदे ने। भाई नंद लाल जी ने दो बड़े प्यारे बचन लिखे ने कहन लगे ऐ बंदे दुनिया दे विच आया है ता एक ही इच्छा मन दे अंदर रख ओ है खुदा दी बंदगी गुरु की सेवा ए गुरु की सेवा दी इच्छा प्रभु दी बंदगी दी इच्छा ए श्रेष्ठ इच्छा है जिन्हां दी जीवन विच रहिंदिआं ए इच्छा पूर्ण हो जांदी ओ वड्डे भागां वाले ने ते जिन्हां नूं प्रभु दी याद गुरु की संगत नहीं मिले ए नीले रंग दा असमान ते भूरे रंग दी धरती तों भला उन्हां नूं की प्राप्त है। उन्हां बड़े प्यारे बचन लिखे हवाए बंदगी आवरद दर वजूद मरा ऐ कलगी धर दशमेश पिता तुहाडे चरणा दी बंदगी करन दी जो इच्छा सी मैनू इस मनुखा जामे दे विच लैके आ गई नहीं तो इस संसार दे विच आउण दा होर मेरा कोई लक्ष्य नहीं सी कोई मनोरथ नहीं सी इको मनोरथ है गुरु की सेवा परमेश्वर दा नाम। हवाए बंदगी अवरद दर वजूद मरा वगर नह जौ के चुनी आमदन नबूद मरा खुश अस्त उम्र के दर बाजाद बेगुजरत वरना चे हासिल अस्त अजी गुंबदे कबूद मरा वरना इस जीवन दे विच की हासिल है जे प्रभु परमेश्वर दे नाम दे नाल जुड़न दे लई समा ही नहीं कढ़िया। भगत कबीर जी फरमांदे कबीर एक करी आदि करी आदि हूं ते आद भगतन सेती गोष्टे जो कीनो सो लाभ। सो वड्डे भाग सतसंगी जनों आप जी उस पावन पवित्र अस्थान दियां हाजरियां भर रहे हो जिस बाबत सतगुरु जी दा अपना बचन है डिठे सबे थां नहीं तुद जेहिया बद्धो पुरख बिधाते तां तू सोहिया वसदी सगन अपार अनूप राम दास पुर हर हां नानक कसमल जाहे नाय रामदास सार। सो वड्डे भाग सतसंगी जनों आओ हजूर दी अमृतमई पावन गुरबाणी दी सांझ पाउण तों पहला
ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਆਏ ਪਾਵਨ ਅਲਾਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਲਵਾਈਏ ਚਰਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ।

देव जी महाराज बख्शिश करन लगे, कहन लगे हे भाई, मनुख संसार दे अंदर खुशी लभदा फिरदा, खेड़ा लभदा फिरदा है, आनंद लभदा फिरदा है, पर सच ए है कि इस सुख नूं प्राप्त करन दे लई कुछ बंदोबस्त करने पैंदे ने, जतन करना पैंदा है, उदम करना पैंदा है। आनंद दा समान मंगल साज, इस दा अर्थ है सुख दा साजो समान, साज दा इत्थे अर्थ है साजो समान, मंगल दा अर्थ है खुशी आनंद दी अवस्था। जिन्ना ने अपने प्रभु प्यारे नूं गाया है उन्होंने मानो सुखां दा ए साजो समान, सुखां दा ए वेला खिच के अपने घरे लै आंदा। याद रखे, खुशी लभदे फिरदे आ ना, मनुख संसार विच सुखी लभदा फिरदा है। सतगुरु जी कहिंदे ने, ओ वडभागण जीव इस्त्री ने मानो सुखां दा साजो समान लभ लिया, कठा कर लिया, जिन्हें अपने प्रभु परमेश्वर नूं गाया है प्रभु दी वड्याई कीते। याद रखियो, सतगुरु जी ने इस पावन वचन दे अंदर एक दृश्य एक प्रतिबिंब ओ पैदा कीता है, जिस दे अंदर एक जीव इस्त्री ओदे व्याह दा समा है, और व्याह दे समय ते की हुंदा है, शगन दा साजो समान हुंदा है, खुशियां दे नाल संबंधित सारा समान पिया हुंदा, सब कुछ ओ व्याह दी खुशी दे नाल संबंधित हुंदा। ते इस दिन लोग जे बीबी दा व्याह होवे ते सुहाग गांदे ने, जे बच्चे दा व्याह होवे ता फिर घोड़ियां गाईयां जांदियां ने, खुशी दे गीत गाए जांदे ने। सतगुरु जी कहिंदे ने, जेड़ी जीव इस्त्री प्रभु प्यारे दे मिलाप दे लई तड़प रही सी, उन्हें जदों प्रभु प्यारे दे नाम नूं जपिया ता इस घर दे अंदर एक खुशी दा गीत एक खुशी दा नाद गूंजया, मंगल साज पया, प्रभ अपना गाया राम। जिन्हां ने अपने प्रभु प्यारे नूं चेते कीता भाई, उन्हां नूं सुख लभे ने, उन्हां नूं सुखां दी दात मिली, उन्हां नूं खेड़े दी दात मिली। एक बचन असी सरवण करदे हजूर दा, सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, सोए दा अर्थ है प्रभु दी वड्याई, सुख देण वाली ओ सिफतो सला, सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, मौलिया दा अर्थ है खिड़ जाना, हरिया भरिया हो जाना। सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली, नाम जपद्या होया रसना रस दे नाल भर जाने, नाम जपंदड़ी लाली, पंध जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, गुरु के मार्ग ते चलदया सच्चे मार्ग ते चलदया हिरदे दा टिकाओ अडोलता बनी रहिंदे, पंध जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, गुर दर्शन देख निहाली, गुरु का दर्शन करदया भाई ओ जीव निहाल हो जांदा, मंगल साज भया, प्रभ अपना गाया राम। गुरु नानक साहिब जी महाराज जी ने सिख नूं ए मर्यादा दिते, सिखा जदों तू सौण लगदा है ना, सौण वेले खुशी दा गीत गा के सोया कर। जो कीर्तन सोहले दी पावन बाणी असी पढ़दे आ ना, इस दा जिहड़ा पहला वचन है वह गुरु नानक साहिब महाराज जी दा, जय घर कीर्त आखिए करते का होए विचारो, ओ हिरदा रूपी घर जिथे हरी दी कीर्ति गाई जा रही है, करते पुरख दे गुणा दी विचार हो रही, जय घर कीर्त आखिए करते का होए विचारो, तित घर गाव हो सोहला सिवर हो सिरजनहारो, मेरी जिंदे तू प्रभु नूं मिलना चाहनी ना, जीउंदी जाने शरीर विच रहिंदे आ उस प्रभु प्यारे दा खुशी देण वाला गीत गा, तित घर गाव हो सोहला उस दे घर दा सोहना सुख देण वाला गीत गा,
तित घर गावो सोहिला सिवर हो सिरजनहारो सिरजनहार प्रभु नु सिमरिया कर सिवर हो सिरजनहारो तुम गाव हो मेरे निर्भव का सोहिला हौ वारी जित सोहिला सदा सुख होए जिस प्रभु दे वड्याई दे गीत दे नाल सदा दे लई सुख मिल जांदा है मेरी ये जिंदे तू उस प्रभु प्यारे दा सिमरन करिया कर वड्याई करिया कर मंगल साज भया प्रभ अपना गाया राम जिन्ना वडभागण जीव इस्त्रियां ने प्रभु परमेश्वर दी वड्याई गायन कीती है भाई मानो ओना ने खुशी दा बंदोबस्त ए साजो समान सोना आनंद दा समा

हे सत संगी जनों, मैं आत्मक अडोलता दे विच टिक के उस गोविंद जी नूं प्राप्त कर लवां। हे मेरी सखी, मिली हुई कंत नूं प्रभु दे रंग विच रत्ती हुई, मैनू ए मत दे, मैनू ए मत दे, मैनू ए सियाणप दे, मैनू ए मार्ग दस कि मैं प्रभु दे चरणा दे विच अभेद किंज होवां। किंज प्रभु प्यारे गोविंद दे चरणा दी प्रीत हासिल करां। हे सखी, मैनू ए मत देओ। जदों गुरु का सिख संगत दे विच उड़दा, गुरु नानक साहिब जी महाराज जी ने संगत दा सिद्धांत तां ही दित्ता है। याद रखियो, एक दीवा जगदा होवे तां ओ दीवा रोशनी तां जरूर करदा है, पर ओदे अपने थले नेरा रहिंदा। पर जदों लागे बलदा होया दूजा दीवा रख देईदा है, दोवें रोशनी भी करदे ते उहनां दे थले भी नेरा नहीं हुंदा। जदों रब दे प्यारे मिलदे ने, ओ एक दूजे दे कोलों गुरु की वार्ता, गुरु की वडियाई पुछदे, गुरु की साखी दा जिक्र करदे, गुरु की बाणी दी विचार करदे, तां उहनां दे अंदर जो कमी है, जो काई कोर है, ओ निकल जांदे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहन लगे, हे सखी, हे सत संगी मित्र, मैनू ओ मत दे जिस नाल मैं आत्मक अडोलता विच

हे भरणे मैं दिने ते रात प्रभु दे दरबार प्रभु दे सोने घर दे अगे खलोती सेवा कर दी रहा दिन रहन दिने रात ठाडी ठाडी दा अर्थ है खड़ी होई खलोती होई दो शब्द ने एक ठांडी है एक ठाडी है एदे उत्ते बिंदी नहीं लगदे ठाडी दा अर्थ है खलोती होई मैं नित खड़ी होई प्रभु दे चरणा दी सेवा करा दिन रहन ठाडी करो सेवा प्रभ कवन जुगती पाया हे भैणे मेनू दस के प्रभु परमेश्वर किस जुगती दे नाल किस ढंग दे नाल किस मार्ग

अनुसार सतगुरु जी ने इस सवाल का नाल ही उत्तर दे दिता। पहले शंत दे विच बिनवंत नानक करहो कृपा, लहो मोहे लड़ लाया हे सत संगी जान। जे तू प्रभु प्यारे नू गुरु नू मिलना चाहना है ना, ता गुरु अगे ए अरदास कर के हे प्रभु तू कृपा कर मेनू टूटे हुए नू अपने लड़ना लाला अपने चरणा नाल जोड़ना। ओदे अगे अरदास कर, अरदास ही इको एक ढंग है जेड़ा टूटिया होया नू प्रभु चरणा दे नाल मेल देंदा, दूर होया नू मेल देंदा है, अरदास ही है। सतगुरु जी बचन कर देना किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मिलो राम, चार कुंट दै दिश भ्रमे थक आए प्रभ की साम। प्रभु दी शरण ते प्रभु अगे कीती हुई अरदास, टुटिया होया नू विछड़िया होया नू मेल देंदे। सतगुरु जी कहिंदे अरदास कर भैणे, ओ प्रभु प्यार

खोजी जना ने उना सत संगी वडभागिया ने नित खोजिया है और खोज खोज के इस रतन की प्राप्ति कर ली। सतगुरु जी कहिंदे बंदिया तू नित खोजिया कर, दिने ते रात खोजिया कर। सतगुरु जी का यह वचन है जो साडा रोजाना का नितनेम सतगुरु जी ने मर्यादा दे अंदर सानू बख्शिश कीता है। एदा अर्थ भी यह सिखा तू नित दे नेम नाल जुड़िया रहे, जे जुड़िया रहेगा तो एक दिन जिहड़ी गवाची हुई वस्तु है तेनू जरूर मिल जाएगी। कबीर केसो केसो कूकी है ना सोइए आसार, रात दिवस के कूकने कबहू के सुने। पुकार बंदे खोज दिल हर दिन हर रोज, दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे। तू दिल दे अंदर प्रभु नू खोज, कदे परेशानी दुख दा सामना नहीं करना पाएगा। सतगुरु जी कहिंदे खोजी खोज लद्दा हर संतन पाहा राम, सत संगियां दे विच्चों मिलिया भाई, खोजन वाले सत संगियां ने

हे सत संगी सहेली, प्रभु दे अग्गे ए अरदास करहे, प्रभु तू मेरा अगम अदाह परमेश्वर है। सदा उस प्रभु दे अग्गे अरदास

नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका पुण्य दर्शन में। मैं हूं आपका दास। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। अक्सर लोगों का प्रश्न सुनने को मिलता है, क्या भगवान की भक्ति के लिए हमें घर बार छोड़कर जंगलों में साधु तपस्वी बनना पड़ेगा? क्या घर की जिम्मेदारियों को छोड़कर भक्ति करने चले जाएं? हमारे परिवार का क्या होगा? हम सभी अपने जीवन में अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार, कोई पढ़ाई, तो कोई गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां निभाता है। क्या भगवान की भक्ति करने के लिए सब कुछ छोड़ना आवश्यक है? क्या परिवार, नौकरी और समाज में रहते हुए भी भगवान को पाया जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान से ही पूछ लिया जाए तो कैसा हो? तो चलिए जानते हैं हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है इस विषय में, इस छोटे से अंतराल के बाद।

पुण्य दर्शन में आप हैं अपने दास के साथ। क्या भगवान की भक्ति करने के लिए सब कुछ छोड़ना आवश्यक है? परिवार, नौकरी, समाज में रहते हुए भी भगवान को पाया जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हाँ, अवश्य पाया जा सकता है। लो भाई, फिर तो काम बन गया। मित्रों, ये हमारी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। युद्ध भूमि में अर्जुन की भी दुविधा यही थी, जिसका जवाब श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 28वें श्लोक के एक अत्यंत सुंदर सिद्धांत में बताया है। यहां श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें सिखाते हैं कि संसार छोड़ना आवश्यक नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए अपनी चेतना को बदलना आवश्यक है। इसे ही युक्त वैराग्य कहा जाता है, अर्थात अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से निभाना, किंतु उनके फल के प्रति आसक्त ना होना, अपने हर कार्य को भगवान की सेवा समझकर करना ही वास्तविक वैराग्य है। यह भागना नहीं, बल्कि सही भावना के साथ जीवन जीना है। एक माँ अपने परिवार के लिए भोजन बनाती है। यदि वह केवल यह सोचकर खाना बनाए कि मैं जो खाना बना रही हूँ अपने बच्चों का, अपने स्वयं का पेट पालने के लिए कर रही हूँ, सब स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खाएं मेरे द्वारा बनाया हुआ और मेरी तारीफ करें, तो यह साधारण कर्म कहलाएगा। किंतु यदि वही माँ केवल यह सोचकर खाना बनाए कि जो मैं ये सात्विक भोजन बना रही हूं उसे भगवान को प्रेम से अर्पित करूं और फिर उसे प्रसाद के रूप में परिवार को खिलाऊं, तो वही रसोई घर भगवान की सेवा का स्थान बन जाता है। काम वही है, रसोई भी वही है, परिवार भी वही है, किंतु भावना बदलते ही कर्म भक्ति बन जाता है। क्या हम दान देते हैं वो भी भक्ति में शामिल हुआ? फिर तो अपना काम भी करते रहो, थोड़ा सा धन दान कर दो, अपना काम खत्म और हो गई भक्ति। ऐसा सच में होता है क्या? बताता हूं थोड़ी देर में। मैं यूं गया यूं आया हूं।

ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस शर्ता लागू।

पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। अर्जुन की भांति हम भी अपनी युद्ध भूमि में अपना निर्धारित कर्म करते हैं। ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति यदि यह सोचकर ईमानदारी से काम करे कि भगवान ने मुझे यह जिम्मेदारी दी है, मैं इसे उनकी प्रसन्नता के लिए पूरी निष्ठा से निभाऊंगा, तो उसका ऑफिस भी साधना का स्थान बन जाएगा। उसे वेतन भी मिलेगा, परिवार भी चलेगा, किंतु उसके मन में अहंकार नहीं होगा कि मैं सब कुछ कर रहा हूं। वह समझेगा कि जो भी मिला है वह भगवान की कृपा से मिला है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने प्रत्येक कर्म का फल मुझे अर्पित करो। इसका अर्थ केवल धन दान करना नहीं है, इसका अर्थ है कि अपने परिश्रम, अपनी सफलता, अपनी प्रतिभा और अपने जीवन का श्रेय भगवान को देना। जब सफलता मिले तो भगवान का धन्यवाद करें, और यदि कभी असफलता मिले तो उसे भी भगवान की योजना मानकर धैर्य रखें। यही सच्ची शरणागति की शुरुआत है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए ही उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में डालते हैं। वो देखना चाहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी ये मुझे याद रखता है या नहीं। शास्त्र बताते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति में लगा रहता है, उसे अलग अलग कर्म कांडों और जटिल अनुष्ठानों में उलझने की आवश्यकता नहीं रहती। उसकी प्रेममयी भक्ति ही सबसे बड़ी पूजा बन जाती है। भगवान भाव देखते हैं, दिखावा नहीं। यदि मन में सच्ची भक्ति है तो साधारण से साधारण कार्य भी आध्यात्मिक बन जाता है। तो आइए आज हम सभी एक छोटा सा संकल्प लें कि आज से जो भी कार्य करेंगे, चाहे वह घर का हो, ऑफिस का हो, पढ़ाई का हो या समाज का, उसे भगवान श्री कृष्ण, श्री राम, जिसको भी आप मानते हैं, उनको समर्पित भाव से करेंगे। यही युक्त वैराग्य है, यही सच्ची भक्ति है, और यही जीवन को सफल बनाने का सबसे सरल मार्ग है। आप अपने जीवन में कुछ भी मत छोड़िए, बस भगवान श्री कृष्ण को जीवन में जोड़िए, बाकी भगवान स्वयं ही देख लेंगे। इस पर कीजिए विचार और मुझे दीजिए आज्ञा, फिर लेकर आऊंगा आपके लिए पुण्य दर्शन। मैं हूं आपका दास, नमस्कार।

बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तो हाडे नाल ने ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स। आ रहा करण औजला दा पी पॉप कल्चर टूर ऑस्ट्रेलिया। मेलबर्न दा पहला शो कुछ दिनों विच ही सोल्ड आउट हो चुका है, हुण दूजा शो 19 अगस्त नू रोड लेवर एरिना विच। ऑस्ट्रेलिया दे होर शोज ते टिकट्स इनफॉरमेशन लई विजिट करो livenation.com.au। गीता दी मशीन करण औजला पी पॉप कल्चर ऑस्ट्रेलिया टूर 2026।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू।
1: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
2: हुन टेंशन छड़ो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
1: फिर लवाइए किथों?
2: सन करंट वालिया कोलो 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
0: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते। किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, फाड़े करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन।
3: ओपिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनिआं दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओपिट होम्स अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओपिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते। 0433-280-252 ते।

0: होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सुपनिया दा एक मजबूत कर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नु 0433-280-252 ते 0433-280-252
1: ओ पाजी एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने
2: हुन टेंशन छड्डो जी गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान बिजली दा बिल घट टेंशन भी घट
1: फिर लवाइए किथों
2: सन करंट वालिया कोलों 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी
1: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ फैमिली इशू प्रॉपर्टी दा मसला कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने बंसल लॉयर्स तुहाडा भरोसा साडा तजर्बा ते जित अपनी कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au
3: Attention travelers. The upgraded Air India experience is now boarding with warm Indian hospitality, gourmet meals, and over 3,000 hours of in-flight entertainment. Better non-stop with Air India.
1: किचन दा स्टाइल डल लगदा बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया हुन टेंशन खत्म करो आ गया ZJ स्टोन मेसन पार्टी करनु बनाए एकदम क्लासी असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल कॉल करो 0410-045-555 या अज ही विजिट करो 104 Collins Road, Melbourne.
4: Very bura hunda hai.

0: ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road te tuhanu udik reya hai. Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest te Sadabahar Mustang. Brand new demo te quality pre-owned vehicles. Trade-in ate finance options we available. Aho te apni navi Ford da test drive karo. Business fleet lai gal karo. Vehicle experts, Tim Forbes ya Kori naal. Radio Hanji de hawale naal pao. 3 saal di free service. Chadston Ford, ready, set, Ford.
1: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
2: गड्डी ता ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालियां नू, लीगल वालियां नू एथे प्रदेस विच समझाऊंगा किवें?
1: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है। सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
3: बलजीत, ब्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए?
4: यार उना दा डेंडीनोंग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
3: ओ हुन टेंशन नहीं, हुन डेंडीनोंग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया। ओही परोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड, डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स, 99 मेन रोड वेस्ट, सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट, डेंडीनोंग। फॉर मोर इन्फो कॉल 0499-2535-45 ते।
4: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
4: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 ते, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au। Thank you.